मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 31वीं तिथि तदनुसार 22 जुलाई सन 2026 प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। समाचारों के तुरंत बाद FM बैंड 103.5 MHz पर विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले होगा।

समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर